0: ने की अलकपुरी जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: ने की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगीराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। माता की जय।
1: Om Sri Alakpurisha Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavane.
0: Ki jai.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jai.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देव की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्रीदेव विश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी महेश्वर

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय ओम श्री अलक पुरीश महादेवम
1: की जय
0: श्री देवेश्वर महादेवम
1: की जय
0: श्री माधवानंद होली गुरुजी श्री साता गुरुदेवम
1: की जय
0: विश्व गुरुजी परमहंस महेश्वरानंद गुरुदेवम
1: की जय
0: परमहंस योगानंद जी की जय

0: सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीषा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेवा की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

finished their surgery, and then they were offered a combination of yoga, pranayam, and yogasans. And some studies had taken long term, up to 5 years, 6 years of patients after they had completed their therapy, cancer therapy. So the average age of the subjects studied in these various studies ranged from age 44 to 63, and 11 studies, because mostly they were studying breast cancer, so 11 of these 13 studies were actually studying ladies. And the methodology was, in most of these studies, there was a supervision of intervention of yogic activities, yogasana and pranayam. So, ज़्यादातर studies में उनके ऐसा था कि कोई एक योग गुरु थे, योग शिक्षक थे, जिन्होंने उनको योगासन प्राणायाम की विधि और ध्यान भावती ध्यान आदि की विधि से उनको परिचय कराया और अपने सामने उनको सुपरवाइज्ड रूप में उनको योगासन प्राणायाम कराए. और उसका ड्यूरेशन देखा जाए तो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक करीब 1 घंटे प्रतिदिन उनको ने स्टडी करा. सो मोस्ट स्टडीज वर इन्वॉल्विंग अ सुपरवाइज्ड इंटरवेंशन ऑफ योगिक एक्टिविटीज बाय अ ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर. एंड इन जनरल, इन एन एवरेज, दे वर ऑफर्ड 1 आवर डेली ऑफ योगिक एक्टिविटीज एंड प्राणायाम. The control group in these patients were those who were waiting to undergo chemotherapy, surgery, radiotherapy, and were not offered yogic intervention or pranayam. They were just advised ki bhai coping mechanism, ki bhai chinta mat karo, pareshan mat ho, tumhara ilaaj ho jayega, sab theek ho jayega. Lekin koi yogasan pranayam usme nahi karaya gaya. Ye isliye aavashyak hai ki hum ye jaan saken ki bina yogasan pranayam ke kitna स्वास्थ्य में गिरावट होती है और उनमें हम कितना लाभ उठा सकते हैं योगासन प्राणायाम करने से. इसलिए जब भी कोई हम मेडिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें एक कंट्रोल ग्रुप जरूर रखते हैं, कंट्रोल ग्रुप, जैसे कि कंपेयर कर सकें कि बिना योगिक प्राणायाम आसन के कितना दुर्गति हुई स्वास्थ्य के परिणामों में और उससे कितना लाभ उठा सकते हैं हम. इसलिए कंपेयर, कंट्रोल ग्रुप हम कहते हैं उसको रेंडमाइज ट्रायल में. तो ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें फिजिकल फंक्शन जो थे, जो फिजिकल फंक्शंस वर इम्प्रूव्ड बाय स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पी लेस देन 0.01 व्हिच इज हाईली सिग्निफिकेंट. अदर वाज साइकोलॉजिकल आउटकम्स, डिस्ट्रेस लेवल एंड एंग्जाइटी लेवल. सो फिजिकल फंक्शन, डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, दीज 3 पैरामीटर्स वर शोन टू बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड. तो जिनमें योगिक प्राणायाम आदि की शिक्षा दी गई उनमें उनका भौतिक जो कार्य था वो अच्छा सुधर गया और उनका मानसिक तनाव जो था, डिस्ट्रेस था, वो कम हो गया और एंग्जाइटी, मानसिक तनाव और एंग्जाइटी वो कम हो गई. ये 3 परिणाम देखे गए, बहुत अच्छे रूप में देखे गए, बाकी में ज्यादा सुधार नहीं हुआ. और देखा उन्होंने डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, एंड देन सेंस ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. सो दे हैव स्कोर्स ऑफ असेसिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन दीज पेशेंट्स हु वर ऑफर्ड योगा एंड प्राणायाम. जिनमें योग प्राणायाम आदि कराया गया उनमें पूरे शरीर की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं हम लोग, जिससे कि उसका अधिक हो गया, सुधार हो गया, और बाकी परिणामों में ज्यादा लाभ नहीं हुआ. तो अभी इन परिणामों को देखते हुए हम लोग आयुष के माध्यम से एक प्रपोजल रखना चाह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, स्टैटिस्टिकली रोबस्ट डेटा नहीं है, इसलिए वी हैव अ प्रपोजल टू आयुष मिनिस्ट्री टू लॉन्च अ लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ट्रायल्स. एंड वी आर वर्किंग इन एम्स इन कोलेबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन. प्रोफेसर रथ वॉज चीफ ऑफ दैट सेंटर, ICPO, formerly called ICPO, Institute of Cancer Cytology and Preventive Oncology. Now it's called National Institute of Cancer Prevention. It is ICMR-funded institute, central government-funded institute. It is located in Noida city center. And our doctors go there regularly and help in cancer screening and prevention trials. So we can perform a prevention trial under the National Institute of Cancer Prevention. And what I propose that we have 3 groups of people, 3 villages, where in one of 30,000 each, and
I have already talked to the chairman of the Maharshi Ayurved Corporation, and they have offered to provide Maharshi Amrit Kalash, which is a rich source of antioxidants of a combination of 50 herbs. It's called Maharshi Amrit Kalash. So 50 jadi bootiyon ka ek samishran hai, aur Brahma Rasayan jo Brahma Samhita mein described tha, usi iska ye roop hai. महर्षि अमृत कलश के रूप में, और इसमें करीब 20 वर्षों से अधिक बहुत साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं अमेरिका में, भारत में, और प्रोफेसर रथ वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व, एंड वी हैव फाउंड दैट इफ यू गिव महर्षि अमृत कलश अलोंग विद पेशेंट कीमोथेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, दे हैव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर ओवरऑल हेल्थ, इन देयर एपेटाइट इंप्रूव्स, देयर डायरिया वॉमिटिंग इज रिड्यूस्ड, एंड देयर माउथ अल्सर्स also reduce, and they have better appetite, and they have body weight gain. In general, cancer patients on chemotherapy lose weight because they are not eating, they have ulcer in the mouth, vomiting, so they lose weight. But in this group, our randomized trial showed that women who were receiving chemotherapy and Maharshi Amrit Kalash, they actually put on weight. So it's statistically significant. It is published in medical journals. You can Google it and find it. So we are now proposing a prevention trial, because there are a lot of animal studies where animals who were fed with this product and then they were exposed to carcinogens, they did not get cancer. So it is acting as cancer preventive herbs. So we propose a combination. It is said that many cancers occur due to stress level, stress in early childhood. There is data that in breast cancer, girls in early life who are stressed, so early life stress in girls leads to breast cancer later in life. So if that is true, then we can offer them de-stressing pranayam and dhyan, bhavati dhyan or transcendental meditation as initiated by our yoga gurus. And that combination will reduce stress along with yogic activities and some herbal products in collaboration may act in reducing the cancer. So this is one such proposal, and we may study a number of incidents of number of cancers, cancer of the breast, oral cavity, cervix, ovaries, they're all related to stress and modern way of living. And along with that, it may also reduce non-communicable diseases such as diabetes and hypertension. Because if you have good ahar, vihar and vichar, you will reduce everything, all bad diseases, you know, yukta ahar viharas. And it may also reduce commonly increasing problem of metabolic syndrome, overweight. And of course, it will reduce the psychological diseases such as depression and anxiety. So in summary, honorable chairpersons, my teacher, Professor Rath, Professor Nayak, Guruji, I humbly submit that most of the data in the literature suggests that there is a strong beneficial effect in reducing the stress level, anxiety level and depression in patients suffering from cancer if they are offered yogasana and pranayama. The effect on improving the fatigue and emotional social function is less, and there is small effect on improving of functional well-being, and studies have failed to show any significant improvement in physical function and sleep. So this is in summary. So jahan tak abhi jitni abhi shodh karya hua hai usse ye pratit hota hai ki bahut adhik labh hai unke mansik tanav mein, unke jo pareshan rehte hain cancer ke mareej, thoda sa labh hua hai unke इमोशनल फंक्शन में, भावों में, भावनाओं में, कार्य करने में, और स्लीप वगैरह में, उनकी निद्रा आदि में बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है जो साइंटिफिक रिसर्च के शोध द्वारा प्रतीत होता है. तो इससे अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, और वी नीड मोर रोबस्ट स्टडीज ऑफ लार्जर सैंपल्स विच आर स्टैटिस्टिकली पावरफुल, एंड मे बी नेशन वाइड और पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज आर रिक्वायर्ड. And again, I noticed that most of the studies had used different yogic intervention and different type of pranayama and meditation regimen. So if all have the same yogic intervention and same meditation, then we may demonstrate better effect with statistical power. अगर सभी जितनी ये योग की क्रियाएं होंगी, अगर सब में एक प्रकार का ही ध्यान प्राणायाम सिखाया जाएगा,
तो हम ज्यादा अधिक दावे के साथ ये कह पाएंगे कि किस योग विधि द्वारा या किस प्राणायाम की, किस ध्यान की विधि द्वारा

0: for this function today, and a very, very warm welcome to you, sir. I would also have the privilege of welcoming Professor Head of Yoga, not just within India, but across the globe. I welcome all of them on our team, and we will be able to have at the end of the day a policy parameter which government can use to shape its policies in the days to come.
1: In yoga and Ayurveda, but also integrating it with the other medical sciences for the greater benefit of the mankind. And now,
2: Maniya Mantri Pipaji, Adarniya Mantri Ashwini Ji, Nagendra Ji, सबसे पहले मैं भारत की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं. केवल भारत तक नहीं तो दुनिया के कोनों कोनों तक यशस्वी रूप से पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि हम योगा के योग विज्ञान को प्रसार करने के लिए विशेष ध्यान देंगे और स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड योग डे की शुरुआत हुई. और जब हम विदेशों में जाते हैं तो जिस प्रकार का रिस्पांस वहां की जनता से योग प्रसार के लिए योग प्रशिक्षण के लिए मिलता है, दिस इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट. और एक बात सिद्ध हुई है कि केवल ये प्रचार और पब्लिसिटी के कारण नहीं हुआ है, तो योग के अनुभव के कारण स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है उसके कारण स्वाभाविक रूप में ये लोगों की स्वाभाविक रिएक्शन है कि जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसका अनुकरण भी कर रहे हैं. मेरा वजन 130 किलो था, अभी मैं 90 केजी पर हूं. तो वैसे बीच में सर्जरी भी मैंने की थी पर 95 पर मैं स्टेग्नेंट था. अब मैं रोज हमारे केरल के एक संस्था है उसके द्वारा घर में ही मैं सुबह तेल मालिश भी करता हूं और स्टीम बाथ भी लेता हूं और करीब 10 11 12 सेटिंग मेरे हुए हैं. मेरा जो 95 पर स्टेग्नेंट था वो 90 पर आ गया. तो वजन कम करने से स्वाभाविक रूप से हेल्थ पैरामीटर सुधर जाते हैं. और मैं एक घंटा सुबह स्वास्थ्य में, प्रकृति में, एनर्जी में बहुत बड़ा सुधार महसूस हुआ. और इसलिए अभी मेरे पास इतने डिपार्टमेंट है और इतना काम है कि सुबह 9 बजे से मैं काम को लगता हूं तो रात को 1 बजे तक मैं लोगों को मिलते रहता हूं. पर मैं आखिरी तक काम कर सकता हूं, एनर्जी रह सकती है. इसका कारण मैं जो एक्सरसाइज करता हूं, योगा करता हूं, उसके कारण स्वास्थ्य अच्छा है. और मुझे लगता है कि इसके साइड आचार्य बालकृष्णन जी यहां उपस्थित हैं, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि इसमें किस प्रकार से कितने का योगा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. और इसलिए आयुर्वेद, योग विज्ञान, ये दोनों इस प्रकार की हमारी विरासत है कि पूरे दुनिया में हम दुनिया के हमारे सभी विश्व के भाई और बहनों को सुखी समृद्ध जीवन उनको योग के कारण मिल सकता है. पर मेरे दृष्टि से दो जो ये सब सिखा सकते हैं, इस पर अगर अच्छे योग टीचर होंगे और वो सभी प्रकार से. और इसलिए मैं विभाग को अनुरोध करूंगा कि आचार्य बालकृष्णन जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हमारे

नागेंद्र जी है, तो मुझे लगता है इसी जैसे काम करने वाली संस्था है। वैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर का ग्रेडेशन किया जो राष्ट्रीय महामार्ग बनाते हैं, और अगर उनको ग्रेडेशन मिनिस्ट्री करती है स्ट्रिक्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो ऐसी संस्थाओं को एफिलिएशन दिया जा सका। इसका जो सिलेबस बनना चाहिए उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी रूप में क्या होना चाहिए और फाइनल रूप में क्या होना चाहिए और रिसर्च में क्या होना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं एकेडमिक काउंसिल जैसी रहती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज जैसे यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उसी साइंटिफिक तरीके से इसका प्रबंधन अगर हमने किया तो प्रोफेशनल अप्रोच में हम लोग दुनिया के अनेक लोगों तक पहुंचने में यशस्वी हो गए। जैसे नॉलेज है हमारा विज्ञान है, योग विज्ञान है, तो आजकल ये हम लोग कहते हैं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड वेलफेयर इज द मिशन फॉर द गवर्नमेंट। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज एंड ये जो है वेल्थ एंड वेलफेयर, तो वेलफेयर का बड़ा अर्थ यही है कि विश्व का कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत हमको ये दिखाती है कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सहिष्णुता, सर्व में समावेशकता, सहजता, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे वही सही है, वही श्रेष्ठ है, हमारा भगवान श्रेष्ठ है और बाकी श्रेष्ठ ने, ऐसा कभी नहीं कहा। हमने यही कहा कि सभी भगवान श्रेष्ठ है, सभी उपासना पद्धति श्रेष्ठ है, और आगे तो हमने यही कहा है कि आकाशात प्रीतम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से नदियों का पानी बहते बहते सागर को मिल जाता है, वैसे हम किसी भी भगवान को अगर वंदन करते हैं तो अंतिमतः वो भगवान को ही मिल जाता है। तो ये जो उदारवादी दृष्टिकोण हमारा है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। पर हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत और हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, इसका समन्वय आज के ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन के युग में, उसका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया में जब कोई भी बात लेकर हम जाएंगे तो वहां के देशों में, वहां के लोगों में उसको स्वीकार करने की एक पद्धति है, और उस पद्धति को तैयार करना और उस पद्धति के द्वारा हमारी जो मूलभूत बातें हैं वो उन समाजों को उनकी भाषा में वो समझते उस स्वरूप में, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा और व्यावहारिक दृष्टि से उन लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, यही काम आयुष विभाग की ओर हो रहा है। हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री की काफी बड़ा समर्थन इस बात के लिए है, और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इसको ध्यान में लेते हुए आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और आज 3-3.5 साल में इस पूरे दुनिया में योग डे को पॉपुलर करने में हमारे विदेश मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जो इनिशिएटिव लिया है, उसके कारण निश्चित रूप से भारत का भी सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुझे लगता है कि विश्व का कल्याण हो, ये जो हमारा भाव है, इसमें विश्व को, विश्व के जनता लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी संस्कृति है, तो क्यों ने उन सब लोगों के लिए हम विशेष रूप से इसका प्रसार करके उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करें और उनके जीवन को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाए। एक तरफ जो बातें पुराने समय से आई है वो सिद्ध हुई है, काल के कसौटी पर सिद्ध होकर लोगों ने उसको स्वीकार किया है, और इसके साथ साथ नया रिसर्च भी हो रहा है। एक बात आचार्य बालकृष्णन जी यहां है और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा,

कि रिसर्च लगातार होनी चाहिए। नदी का प्रवाह जब बहते रहता है, वो जिस प्रकार से बहता है, वैसे लगातार रिसर्च बहते रहना चाहिए। और रिसर्च यही किसी भी देश के लिए सबसे भविष्य में बड़ा कैपिटल होता है। और रिसर्च करने के लिए अनेक जगह पर सरकार की ओर से जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो विशेष रूप से इसी मिशन में काम कर रहे हैं, इनको हम अलग अलग योजनाओं के द्वारा उस कार्य के लिए सरकार के द्वारा मदद करें, ताकि वो रिसर्च में और प्रोफेशनल रिसर्च हो। और ये रिसर्च अगर होगा तो हमारे पहले ही हमारे संतों ने जो कुछ बताया वो तो बहुत ही अमोल ऐसा एसेट संपत्ति के रूप में हमारे पास है। पर उसके साथ साथ नया रिसर्च जो है वो उसको जुड़ेगा, तो कंप्यूटर के कारण और बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। आज हम लोग हमारी वेबसाइट पर एक आधी बात डाल देते हैं तो बहुत कम समय में दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी योग के बारे में, योग की पद्धति के बारे में, योग के प्रशिक्षण के बारे में, योग के रिसर्च के बारे में, विविध प्रकार की जो स्वास्थ्य की तकलीफ है उसके बारे में, जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको भारत सरकार की तरफ से स्टैंडर्डाइज करके, उसको रिकॉग्नाइज करके, उन पद्धति को और पॉपुलराइज करने में हम दुनिया तक लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि विश्व के स्वास्थ्य को हम सुधारने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रयास तो हो रहा है, पर कभी कभी प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक ये अर्थ में नहीं कह रहा हूं। प्रोफेशनल मीन्स मैनेजमेंट वाइज परफेक्ट। और ये जो इसका प्रबंधन है, ये करने के लिए आयुष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भाषा में, सभी देशों में और सभी प्रकार के ऐसे प्रशिक्षक को तैयार करके उनकी कोर्सेस, उसको ठीक प्रकार से रिकॉग्नाइज करना और उसके आधार पर नए नए रिसर्च के ट्रेनिंग करना। और ट्रेनिंग में भी आजकल जैसे हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में करते हैं कि मास्टर ट्रेनर होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिर उसकी लेयर नीचे जाती है और फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी को तैयार करे। क्योंकि एक बात सच है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अटल है। यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा हमारे बीच में तो कोई है नहीं है। तो एक व्यक्ति जो इतना अध्ययन करता है, जीवन में इतना ज्ञान मिलाता है, उसके समाप्त होने के बाद वो ज्ञान भी चला जाता है। तो उस ज्ञान को वो उसके द्वारा उसके सम विचार के बाकी लोगों को भी प्रशिक्षित करेंगे तो उसी ज्ञान की भूमि के आधार पर वो और ज्यादा अच्छा काम करेंगे और ऐसे काम करने वाले अनेक समर्पित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। वैसे एक आखिरी में एक बात मैं कहूंगा कि एक फिलोसोफर ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, कहा विवेकानंद जी ने कहा है। तो खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जाता। और इसलिए हमारे इस ज्ञान को देश के हजारों लाखों नौजवान युवा युवतियों को अगर प्रशिक्षित करें और वो उनके प्रोफेशनल डिसिप्लिन लाइफ अप्रोच से इसी के साथ प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण प्रबोधन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन त्रिसूत्री पर आधारित ये कार्यक्रम को हम आगे लेके जाएंगे तो विश्व का भी कल्याण होगा, भारतीय संस्कृति का नाम भी ऊंचा होगा, योग विज्ञान को स्वीकारने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कहना मैं थोड़ा सा हिम्मत करके कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो कभी कभी आराम भी देती है, पर उसके दुष्परिणाम जो है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। और उस साइड इफेक्ट्स के कारण भी अनेक लोगों के जीवन को किस प्रकार से डिस्टर्ब हुआ या नजदीक से देखा गया है। हमारी उपचार पद्धति जो है इसमें साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, और इसलिए इसके बारे में रिसर्च तैयार करना, वेबसाइट डेवलप करना, प्रोग्रामिंग डेवलप करना, इसके वीडियोस तैयार करना, इसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसके प्रेजेंटेशंस तैयार करना, अलग अलग भाषा में उसका उपयोग करना, उसके कोर्सेस एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ स्टडीज को बनाकर उसको नोटिफाई करना, उसके आधार पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मिनिमम ग्रेजुएट लेवल तक का ट्रेनिंग, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का ट्रेनिंग,

0: फिर उसके बाद रिसर्च का ट्रेनिंग, और ये ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। अभी रामदेव बाबा जी और बालकृष्णन जी बहुत बड़ा आयुर्वेद पर रिसर्च और यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, उसी में वो योग विज्ञान का भी काम कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है इन सब बातों को सरकार ने निधि देने की आवश्यकता है। सरकार अगर इसको सही में कंट्रोल करने में फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करे, ट्रांसपेरेंसी रखे, निर्णय प्रक्रिया को गतिशील रखे और इनकी सलाह से बने हुए उद्दिष्टों को पूरे करने के लिए ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को उनको प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित करने के लिए जितना आवश्यक है उतना सरकारी सहयोग करें, रिकग्निशन दें, रिस्पेक्ट दें और अच्छे काम करने वालों को साल भर में एक बार पुरस्कार दें, तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रोत्साहन होगा। क्योंकि एक बार एक ने मुझे पूछा था कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम करने वालों को अगर हम सम्मान करें साल में एक बार राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ेगा और काम करने वाले समर्पित अनेक लोगों की संख्या बढ़ेगी जो इस विचार को और कार्य को लेकर आगे जाएंगे, और ये कार्य निश्चित रूप से आगे जाएगा। इसकी बहुत अच्छा बेस श्रीपाद जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ने खड़ा किया है, प्रधानमंत्री जी का पूरा सपोर्ट है, सरकार का पूरा सपोर्ट है। निश्चित रूप में विश्व में इन सब सपनों को पूरा करने का एक दायित्व विभाग के ऊपर है, और आज वर्ल्ड से सभी लोग आए हुए हैं, ये सपना पूरा होगा ये मेरा विश्वास है। मैं थोड़ा पहले खड़ा हुआ हूँ क्योंकि आज गंगा पर 12 बजे कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम की घोषणा भी वहाँ होने वाली है, और इसलिए मुझे वहाँ जाना आवश्यक है। नहीं तो मैं सभी आदरणीय अतिथि जी के विचार सुनने में मुझे भी बहुत रुचि थी, पर यह कार्यक्रम का मुझे जाना पड़ रहा है। मैं उन सब की हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और फिर से एक बार इस कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने अपने संदेश के माध्यम से अपने अनुभव जो आपने हमारे साथ बांटे। मैं माननीय मंत्री जी एक छोटी सी भेंट, स्मॉल टोकन ऑफ आर ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन टू यू, मे रिक्वेस्ट श्री श्रीपद येसु नायक जी टू काइंडली प्रेजेंट दी मेमेंटो, एक स्मृति चेन भेंट कर माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहेंगे। I think, ladies and gentlemen, the Honorable Minister inspired everyone, people who are practicing yoga, by sharing his own experiences since the time he has practiced yoga, the change which he has experienced in himself, inspiring the researchers and academicians to continue with the research work, for their contribution is going to be further promoting yoga and taking it to the world. He also brought in a lot many suggestions and recommendations regarding training, research and effective communication to take yoga more global, and assured everyone the hand-holding by the government, the support by the government towards encouraging people who are working in the field, not only by recognizing them through awards, but also whatever support in terms of funding or whatever other support which are requiring, he assured of the support to them. So I think coming from the Honorable Minister definitely inspires and motivates everyone who is working in the field. And now I would like to request Professor H.R. Nagendraji, the Chancellor of S.Vyasa. Once again, ladies and gentlemen, a very simple person who, with his renunciation and seva bhav, he is doing a yeoman service to humanity.

नाहंकारता प्रबुदीपकारता महाप्रबुदीपकारता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ।

की आराधी भगवान दीप नारायण भगवान की सत गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।